0: ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭୌତିକ ଶରୀରର ପୁଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ରୂପେ ଆତ୍ମା ବି ରହିଛି। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक

0: प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाची वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital. The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the new round of GST reforms approved by the GST Council yesterday. In a social media post, the Prime Minister

प्रचार कलु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भगवत प्रयोजना करथिले सुहास महांती संगीत परिचालना करथिले तारकांत पंडा आकाशवाणी भवानी पटना वर्तमान समय सकाळ 6:45 हेबाक जाउछि आमर परवर्ती कार्यक्रम संबलपुरी संवाद रिले करि प्रचार करुछु आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररु परिपरि शुणिबे संस्कृतरे संवाद आकाशवाणी दिल्लीरु।

0: 4 दिन भितरे राज्य पूरापूरी फिरबा बोली पाणीपाग विभाग तरफ कहुआई सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर और नुआपड़ा जिलार केतटा जगान मौसुमी फिरबार प्रक्रिया मूल होती आज 23 जिलान बिजली घड़घड़ी सांगे हालकानु मध्यम धरण वर्षा होगा बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कर आंचलिक खबर शुनिपारे राति 7:02 थी जुहार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: माध्यमे AIR न्यूज अलर्ट्स इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
1: भारतेन विगतेषु कतिपयेषु दिवसेषु आभा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं तथा रियादनगरे स्थितं किंग खालिद अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं लक्ष्यीकृत्य जातानां आक्रमणानां निन्दा कृता। एतेषु आक्रमणेषु नागरिकाणां मृत्युः अभवत् तथा अनेक जनाः व्रणिताः जाताः। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् नागरिकोपयोगी आधारभूत संरचनां लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं सर्वथा अस्वीकृतं वर्तते। रियाद नगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन सऊदी अरब देशे निवसतां भारतीय नागरिकाणां कृते परामर्शः प्रसारितः। वर्तमानस्थितिं दृष्ट्वा भारतीय नागरिकाः सतर्काः भवेयुः, आवश्यकतायां च गृहेषु एव तिष्ठेयुः इति दूतावासेन परामर्शः प्रदत्तः। भारतीय नागरिकाः प्रवर्तमान घटनाभिः सम्बद्धानां दृश्य श्रव्य चित्राणां वार्तानाञ्च सामाजिक माध्यमेषु प्रसारणं पुनः प्रसारणं च न कुर्युः इति दूतावासेन अनुरोधिताः। स्थानीयाधिकारिभिः आधिकारिक माध्यमैः प्रसारितानां निर्देशानां पालनमपि कर्तुं तान् सूचितम्। प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्रस्य अहोरात्रम् उपलब्धा दूरभाष सहायता सेवा निःशुल्क दूरभाष संख्यायां 8002741234 इत्यत्र उपलब्धा अस्ति। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य रांची नगरे वेस्ट इंडीज दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी भवानी पटना वर्तमान समय सकाळ 7:00 शुणंतु आजि आम केन्द्रर प्रचारित हेबाक थिबा केतोटी कार्यक्रम संपर्करी सूचना। सकाळ 7:25 शुणिबे स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित कार्यक्रम स्वच्छ जीवन, उपस्थापना प्रफुल्ल कुमार माझी। श्री रामचरित मानस सकाळ 7:30 चासर कथा सकाळ 7:40 धारावाहिक नाटक आदिकथा शुणिबे सकाळ 7:45 सकाळ 8:30 शुणिबे शारदीय दुर्गापूजा अवसरें राज्यस्तरीय प्रसारण में पीठ परिक्रमा। एक क्रम शुणिबे आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रस्तुति कृपामयी माँ तारा तारिणी प्रयोजन ऋषिकेश पंडा। रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्रर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कृत महाकाव्य वैदेहीश विलासर संगीतात्मक परिवेषण शुणिबे सकाळ 8:45 प्रयोजन प्रसेनजित महांति और डॉक्टर शांतनु कुमार रथ। सकाळ 9:00 शुणिबे हिंदी कथाचित्रर गीत। भारतर मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनसेवार 25 वर्ष पूर्ति उपलक्षे एक विशेष कार्यक्रम रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली सकाळ 9:10 ओडिया कथाचित्रर गीत शुणिबे सकाळ 9:45 विशेष कार्यक्रम खोला झरका पूर्वाह्न 10:10 दिन 12:00 शुणिबे आदिवासी गीत क्रम कोटियाकंध गीत परिवेषण करिबे शुक्रमा झी साथी। सुगम संगीत दिन 12:30 शिल्पी माने हेले वेणुधर सुबुद्धि शालभामा महापात्र शंकर प्रसाद दत्त गीता पटनायक।

0: कुटुम्बकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है।
1: विदेशी कर्मचारी लगी आमेरिकीय कंपानीगुड़िक पक्षर ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराइबार व्यवस्था प्रेम योजना को आठटी प्रमुख वैषयिक ज्ञानकौशल और आउटसोर्सिंग कंपानी लगी ट्रंप प्रशासन पक्ष स्थगित रखी। एक कंपानीगुड़िक भारतीय कंपानी इन्फोसिस टीसीएस विप्रो और एचसीएल समेत बहुराष्ट्रीय कंपानी कग्निजांट काबजेमिनी माइक्रोसॉफ्ट और एडोब संपृक्त कंपानीगुड़िक वर्तमान फेडराल तदंत चालू रही दृष्टि एभली पदक्षेप निजाई जुक्तराष्ट्र आमेरिका श्रम सचिव किथ सोंडरिंग कहते कंपानीगुड़िक स्वल्प वेतन आमेरिकीय कर्मचारी बदल में विदेशी कर्मचारी कार्य दे संपर्क में उपराष्ट्रपति जे डी भान्स अभियोग कर। रियाद्र आभा आंतर्जातिक विमान बंदर और किंग खालिद आंतर्जातिक विमान बंदर उपर गत किछि दिन मध्ये करा जायथिबा आक्रमण द्वारा साधारण नागरिकों मृताहत घटना को भारत निंदा करिछि। वैदेशिक मंत्रालय पक्षर ए संपर्क में जारी करा जायथिबा विवृति रे कहायैछि साधारण भित्तिभूमि को लक्ष्य करी करा जाउथिबा एभली आक्रमण कदापि ग्रहणीय नुहे। मृतकों परिवारवर्ग प्रति समवेदना जणाइबा सहित साउदी आरब सरकार और नागरिकों सहित एभली विपद समय भारत दृढ़ भाव छिडा मंत्रालय परिप्रेक्षी में रियासित भारतीय दूतावास पक्ष साउदी आरब रोकता भारतीय माने अधिक सतर्क रहा सहित अति आवश्यक नथिले बाहर को नजिबा लागि परामर्श दिया जाइछि। साउदी आरब विभिन्न विमान बंदर उपरे हाउथी माने क्षेपणास्त्र आक्रमण करथिबा दाबी करिछन्ते। एथिसहित साउदी तैल केन्द्र एवं विमान बंदर श्रमिक माने दूरै रहिबा लागि हाउथी मानक पक्षरु सतर्क करा जायछि। अन्य पक्षरे साउदी नेतृत्वाधीन मेंट पक्षरु तीनोटी बालिस्टिक क्षेपणास्त्र को नष्ट करा जायथिबा दाबी करा जायछि। भारत वेस्टइंडीज चलित पुरुष टी20 क्रिकेट सीरीज्र द्वितीय मैच आज रांचीठे खेल संध्या 7:00 एही मैच आरंभ हेबो। लखनऊ ठारे अनुष्ठित प्रथम मैच रे भारत 8 विकेट रे वेस्टइंडीज को परास्त करी सीरीज रे 1-0 रे आगुआ रहिछि। पूर्वरु उभय दल मध्ये खेला जायथिबा दिनिकिया आंतरजातिक सीरीज को भारत 2-1 रे अख्तियार करिछि। मुख्य संवाद गुडी को पूर्णि थरे नूआदिल्ली जारी रही महिला एवं शिशु विकास विभाग सम्मेलन उद्यापनी समारोह में आज उद्बोधन देवे प्रधानमंत्री। कृत्रिम बुद्धिमतार सुफल समस्त नागरिकों निकट में पहुंचाइबा उद्देश्य आसंता नवेम्बर सुधा सरकार प्रकाश करिबे एक परामर्शवली। विदेशी कर्मचारी लगी आमेरिकीय कंपानीगुड़िक पक्षर ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराइबार व्यवस्था प्रेम योजना को आठटी प्रमुख कंपानी लगी स्थगित रखिंट ट्रंप प्रशासन एवं भारत वेस्टइंडीज द्वितीय टी20 क्रिकेट मैच आज खेल रांची रे। संवाद शेष होला।
2: एतेबेळ जाए कार्यक्रम लगरी प्रचार कलु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु आकाशवाणी भवानी पटना। वर्तमान शुणन्तु स्वच्छ भारत मिशन उपरे आधारित कार्यक्रम स्वच्छ जीवन उपस्थापन करिछन्ति प्रफुल्ल कुमार माझी।

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशलक्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें? किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଧାରାବାହିକ ନାଟକ ଆଦିଗାଥା। ରଚନା ଉମାଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମାନଭଞ୍ଜନ ହୋତା, ସହଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 8ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଓ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ସକାଳ 8:30 ଶୁଣିବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସାରଣରେ ପୀଠ ପରିକ୍ରମା। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST परिषद के अनुमोदित GST सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय अनुपालन

0: लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़के, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़ खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को

0: अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। PVK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
2: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, TCS, विप्रो और SCL के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की PV सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ डिपार्टमेंटल समिट ऑन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली टुडे। गवर्नमेंट कैप्स ट्रेड मार्जिन्स ऑन नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर ड्रग्स एट 30% ऑफ एमआरपी। Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day departmental summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes including nutrition, early education, child protection, women's safety and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price or MRP, a report.
4: The Ministry of Chemicals and Fertilizers expects this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500.

मिदं नो तबसिवे कुपुत्रो जाये तत्पतिदपि कुमातां न भवति। जगन्मातो मातो तव चरण सेवा नरचिता नवा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयोस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयिनीरूपमं जतपकुरुषे कुपुत्रो जाये तत्पतिदपि कुमाता।

0: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मनु रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु। चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मनु रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।
1: चासी भाई ओ भोनी मानंक पाई जरूरी सूचना राज्यर समस्त पैक्स लैम्स एवं खुचरा विक्रय केंद्र गुडी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण रे मौजूद रहिछि राज्य रे सारर कोनोसी अभाव नाही तेनु अजथा भयभीत न होई किंबा आगुआ अधिक सार मौजूद न करी केवल फसलर वर्तमान रा आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु एथिपई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मशीन माध्यम रे सरकारी धार्य मूल्य रे सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाबे रसीद संग्रह करंतु गुजबरे विश्वास करंतु नाही सार कलाबजारी को रोकंतु मा माटी रा सुरक्षा पई जैविक सार प्रयोग करबा पई भूलंतु नाही कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार। चासी भाई ओ भोनी मानंक पई जरूरी सूचना राज्यर समस्त पैक्स लैम्स एवं खुचरा विक्रय केंद्र गुडी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण रे मौजूद रहिछि राज्य रे सारर कोनोसी अभाव नाही तेनु अजथा भयभीत न होई किंबा आगुआ अधिक सार मौजूद न करी केवल फसलर वर्तमान रा आवश्यकता अनुजाई सार क्रय करंतु एथिपई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मशीन माध्यम रे सरकारी धार्य मूल्य रे सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाबे रसीद संग्रह करंतु गुजबरे विश्वास करंतु नाही सार कलाबजारी को रोकंतु मा माटी रा सुरक्षा पई जैविक सार प्रयोग करबा पई भूलंतु नाही कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार।
2: तेबे आरंभ करबा इन्वेस्टिंग रा पाठ।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: कार्यक्रम शेष शुणु दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कथाचित्र गई लता मंगेशकर उदित नारायण गीत रचना करिसंती आनंद बक्सी संगीत निर्देशना जतीन ललित।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा की 22वीं कड़ी। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलों की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
2: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहां से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको

0: देना पड़ेगा।
1: तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
2: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
1: जी
2: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
3: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा,
2: बिल्कुल
3: 4-5 साल 3 साल लगते हैं बनाने में, इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीजों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इंपैक्ट। लेकिन अगर अ गुड बेंचमार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years is a good benchmark for many of the initiatives that will and have changed the ease of living for our families.
2: Okay.
3: तो उस benchmark से आपसे आगे बात बढ़ाते हैं।
2: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
1: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें घर में रहकर आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप। तो आप, मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
2: एक होलिस्टिक
1: पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी।
2: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिस इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
1: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवरऑल होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है, ये हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा, सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
2: जी।
1: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके

0: एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो एक पूरी चेन है, वो घर है, इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे, अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है, वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा। और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक,
1: यानी काफी लेयर्ड टर्म है। जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
1: जी,
2: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गांवों में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अच्छा पानी है और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट्स हमारे पास है कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे, दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
0: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में भी देखा, राज्य

0: का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था। वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी निहार का, जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
1: बिल्कुल।
0: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया, जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं ये कहूंगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट। महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर।
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा। शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है।
2: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया
0: उस
2: घर की तो दशा उसी दिन बदल गई।
1: उसी दिन बदल गई।
2: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है। एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इस काम का, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था उस टाइम पे एवरी सेकेंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकेंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ्स है ये, रिफ्लेक्ट कर। आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टीमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप। आप सोचो आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया। ये स्पीड है, तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था, और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़, अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-6-7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, उतने बड़े हाउस होल्ड में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
2: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से, इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
2: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
1: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
2: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है, और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जांपल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है।

0: रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी।
0: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए। लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है, तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाया, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो एक सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
1: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं, तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में?
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहां बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में, राइट
1: जी।
2: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए, कुछ चीजें समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोले कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती,
1: बिल्कुल
2: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा, सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती, सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती,
1: बिल्कुल
2: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है, आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों,
1: तो अलग अलग नजरियों
2: दोनों के रिस्पांस में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी।
2: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जिस बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं। फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के आप उसके देखिए बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो
1: जनता
2: की कैटेगरी में जी। तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
1: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहले जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना, इन पेशेंट इलाज होना, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
0: जी,
1: ये उसका मेन पर्पस है। आप सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
0: जी,
1: इतने लोग, और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
0: जी।
1: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियां कवर हो रही है ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डलनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इन परिवारों को। तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों के, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल है उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पर एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी, एग्जैक्ट
2: जी,
1: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो, उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है।

0: थैंक यू सो मच।
1: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप

किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: पीएम किसान हिताधिकारीको पई जरूरी सूचना योग्य चासिंग को निकटरे सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेसको स्वच्छ और निर्भुल करिबा पई भारत सरकार आरंभ करुछंती एक स्वतंत्र अभियान अक्टोबर 2 रु 31 तारीख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान पीएम किसान योजनार आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भावे पाइबा पई एग्रीस्टाक पोर्टल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सीडिंग एवं ईकेवाईसी करिबा बाध्यतामूलक एथिपई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: कार्यक्रम शेष से शुणु फूलचंदन कथाचित्र गई अक्षय महांती गीत रचना करीर्षानंद दास कानुनगो संगीत निर्देशन सरोज पट्टनायक।

0: ରଚକଲୁ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁକେଶ କୁମାର। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विभाग से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधान हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटक निष्क्रिय करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
3: सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एलआर मडगू कैंप के पास बोधराज पदर नाले के करीब एम्यूनेशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में आकर गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तल अवीब जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: सुनुछंती सुगम संगीत आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्ररु कार्यक्रमरे एथर आसंतु शुणवा शिल्पी शंकर प्रसाद दत्तंक कंठरे परवर्ती गीतटी। गीत रचना करिछंती दुर्गा माधव पंडा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य।

0: सात तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संविदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कहला अरे बोतर देखी पोतर पकई देउछे का बोला अरे बोतर देखी पोतर पकई देउछे अर बेला देखी ढोढो मुड़िया खाली मोर काई चमाली
1: बाबा केते थोर कोमियो बजा।

0: में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी रिगार्डिंग इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है। 550 million
4: users. भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G

0: उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्ता उम्मीदवार उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
2: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
3: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है।

0: इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया अनार कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अपने कार्यक्रम सुनती आकाशवाणी कटक केन्द्र कार्यक्रम आम केन्द्र प्रचारित हो 308.6 मीटर तथा 9 परे।
3: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
4: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
4: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: सुनुथिली हिंदी कथाचित्रर गीत आकाशवाणी भवानीपाटना। समय वर्तमान अपराह्न 3:00 हेबाक जाउछि। सुनंतु हिंदी रे परे इंग्राजी रे संवाद आकाशवाणी दिल्ली रु।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य होता है।
5: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
4: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना

0: को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल, वित्त, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जनसेवा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इसे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। लक्षद्वीप, बिहार, आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दूसरा T20 क्रिकेट मैच रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said in view of this, the decision to deny permission was taken also considering the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
3: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
2: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi Police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. All mail and express trains departing from their source stations after 2 p.m. today and scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow will be cancelled at source. The Railways Ministry said the decision has been taken in view of the anticipated severe road traffic congestion in areas around both the railway stations tomorrow. Delhi Metro Rail Corporation has informed that 57 metro stations will be closed from 9 p.m. today till tomorrow.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
3: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की
2: जी। हाँ,

0: श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
1: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
0: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: मिमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है।
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं।
0: जी, यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
0: जी, तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
0: जी,
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
1: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओ, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
0: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
1: जी हाँ बिल्कुल। तो आइए श्रोताओ, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
0: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज

0: सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
1: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
0: सीखो, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकाल

0: कला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
0: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
5: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: भतीजा सिंह,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां

0: के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
5: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
2: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
6: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
2: कुसुमलता,
6: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
6: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: सुनतले सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 1390 भाव आपके शुणी भवानी पटना।
9: दस लक्ष लॉटरी मते वाओ
10: हसला। नकली ऑफर्स प्रति सावधान।
11: आरबीआई कहे
12: सचेतन हुंतु, सतर्क रुहंतु।
13: तेबे आरंभ करिबा इन्वेस्टिंग रा पाठ।

0: द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: हे गला बंदोबस्त
2: कहारो गुडीर फीस रो देखा
1: 20,000 रो लोन तुरंत
2: जणा छि के दोउछि सुध केते अछि लोन नियंत्रित संस्था गुडी करू हिने आउ लोन सेतिकी जेतिकी दरकार ताबी जांच करिकी हे गला बंदोबस्त दरमा एडवांस रे पठेइछि
3: आरबीआई कहे
2: सठिक आर्थिक आचरण रखे आपनको सुरक्षा रो ध्यान
4: प्रचार करुछु कार्यक्रम जुबवाणी आज एही क्रम रहिछि संभावना

0: ଆକେ ଶୁଣି ଭବାନୀ ପାଟଣା ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉ. जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन टिमोथियोस हेसेबोन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀ ପାଟଣ।
1: आपणकर 4800 रिवार्ड पॉइंट्स आज ही एक्सपायर हो जीवो एबे रिडीम करि नियंतु।
2: अरे वाह मोर इत्ते पॉइंट्स केमिति आसला
3: बस इमिति पचारंतु व्हाई रिवार्ड पॉइंट रो नारे आसीथिबा कोनोसी अजणा लिंक रे क्लिक करबा पूर्वरु टिके भाबंतु गोटिए व्हाई आपणकु ठकेइरु बंचाई पारे सबुबेले पचारंतु WHY कहउछंती SBI रो कॅप्टन व्हाई आपणकर साइबर रक्षक।

0: आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रीति मिश्र जुहार पहला मुख्य खबर भुवनेश्वर ओडिशा सूचना सेवा अधिकारी दिग्दर्शन कार्यक्रम थी जोग देले मुख्यमंत्री विज्ञापन परिचालन के अयतका सहज करवा लगी संचार एप रखले उन्मोचन राज्य भिन्न भिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्र संसद निर्वाचन लगी सरला नामांकन पत्र दाखल उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंकर जयंती अवसरे राज्यवासी जनाले श्रद्धांजलि आउ महालय अवसरे आयबाकाल धवलमुखी बेस्ती दर्शन देबे मां समलेश्वरी। एथरा पूरा खबर डिजिटल जुग्र प्रतिबंधक मानकर मुकाबला लागि ओडिशा सूचना सेवा नुआ ज्ञान दृष्टिकोण आ उपकरण सहित विकसित हेबा बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मेलनी कक्षन ओडिशा सूचना सेवा अधिकारी मानकर दिग्दर्शन कार्यक्रम थी जोग देकरी सामाजिक गणमाध्यम रो यहादेर धारा उपरे उद्बोधन देकरी मुख्यमंत्री कहिछन सामाजिक गणमाध्यम परिवर्तन बेलके खाली जोगाजोग माध्यम हेकरी नाइन इटा शासन व्यवस्था और सरकारक लागि परिवर्तन रो बहुटे सुजोग आनी देबार सहित नुआ दायित्व तुलौछे ओडिशा बागिर गुटे राज्य लागि एआई रो बहुत संभावना रहिछे सरकारी तथ्य के ओडिया आउ अलग भाषाती उपलब्ध कराबार समाज भिन्न भिन्न वर्ग लगी सहज आ बुझी हेला बाकी जोगाजोग तैयार करबा लगी प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार उपरे मुख्यमंत्री जोर दैछन।
1: हमर लक्ष्य केवल व्यूज किमा फॉलोअर संख्या वृद्धि करबा नुहे बरं बुझामणा सचेतनता जनसाधारण अंशग्रहण को वृद्धि करबा यार लक्ष्य मत हेबा उचित। आज दिन में जहाँ नुआ पीढ़ी युवपीढ़ी जो चाहूंट से आधार करने पड़ो एवं से नियमित भाव में प्रत्येक कार्यक्रम को नुआ रूप से नुआ ढांचा केमती करेंगे तार डेवलप केमती करेंगे विकसित करेंगे से आपको प्रोत्साहित करी।
0: ये अवसर सूचना और लोकसंपर्क विभाग तरफ विज्ञापन परिचालना के अयतका सहज सुविधाजनक करबा लागि संचार एप रो उन्मोचन करा जैछि। ई एप जरिए विज्ञापन व्यवस्था अयतका सहज आ पारदर्शी हे परबा कार्यक्रम ते भारत सरकार को पत्र सूचना कार्यालय रो अतिरिक्त महानिर्देशक अखिल कुमार मिश्र उपस्थित थिले। सूचना सेवा अधिकारी मानको संबोधन करिकि श्री मिश्र कहिछन जनसंचार गुटे चिराचरित प्रशासनिक प्रक्रिया नुहे हेले प्रभावी प्रशासन लागि इटा सबनु गुरुत्वपूर्ण आए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भुवनेश्वर लोकभवन ठाने राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्भम पाटी को सौजन्यमूलक साक्षात करिछन। ई अवसर राज्यर विकास प्राथमिकता और भिन्न भिन्न पदक्षेप बाबदे दुईकर भितरे आलोचना हेछि। ओडिशार अभिवृद्धि के त्वरान्वित करबार विकासमूलक काम के तुर्ति करबार आउ जनकल्याण के अयतका प्राधान्य देबार बाबदे भी मुख्यमंत्री राज्यपाल संगे आलोचना करिछन। राज्यर भिन्न भिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्र संसद निर्वाचन लगी आज दिन 10 बजे नु 1 बजे भितर नामांकन पत्र दाखल शेष होती। दुपहर 2 नु 4 बजे भितर नामांकन पत्र मानकर जांच करा जाइकरी संजर 5 बजे चूड़ांत प्रार्थी तालिका बाहरी। आबाकाल दिन 1 बजे तक प्रार्थीपत्र प्रत्याहार लगी समय धारिज कर 14 तारीख व्हाई आई स्टैंड फर सभा कर 15 तारीख दिन भोट होकर फलाफल बाहर और 16 तारीख दिन शपथ ग्रहण उत्सव होन जन दिया जाए राज्य

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला जारी। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी

सिंधु, कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्ण मूर्ति रॉय अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप का आयोजन मिस्र के काहिरा में, पदक स्पर्धाएं कल से खेली जाएंगी। संघाई मास्टर्स में ज्वेरेव तीसरे दौर में पहुंचे, साकामोतो ने दूसरे राउंड में रुबलेव को हराया। और सीनियर पुरुष नेशनल हॉकी चैंपियनशिप कल से झांसी में शुरू।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से और सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड के रांची, जहां जेएसएससी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा क्रिकेट मुकाबला जारी है। रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16 ओवर 4 गेंद पर 4 विकेट आउट हो गए हैं भारत के और भारत ने 187 रन बना लिए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है और इस मुकाबले की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद पर 20 रन बनाए हैं। वहीं संजू सैमसन, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे वर्ल्ड कप में, उन्होंने 41 गेंद पर 82 रन बनाए, जिनमें 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा था। और लोकल बॉय ईशान किशन की बात की जाए तो उन्होंने 22 गेंद का सामना किया और 43 रन बनाए, जिनमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। शिवम दुबे ने, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था फाइनल में एशियन गेम्स में, उन्होंने 10 गेंद में 7 रन बनाए और इस समय श्रेयस अय्यर, कप्तान श्रेयस अय्यर 8 गेंद पर 16 रन बनाकर और तिलक वर्मा 8 गेंद पर 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए वेस्टइंडीज की तो अकील हुसैन ने 3 ओवर में 46 रन दिए। वहीं रोमारियो सेफर्ड का अंतिम ओवर जारी है, उन्होंने 3.4 गेंद पर 47 रन दिए। उधर रोस्टन चेज ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में महज 6 की इकोनॉमी रेट से 3 विकेट लिए और 24 रन ही दिए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी एकता थानी। एकता, अभिषेक शर्मा के लिए बेहद अहम माना जा रहा था ये मुकाबला, आज कौन से रिकॉर्ड अपने नाम करते करते रह गए अभिषेक?
1: प्रशांत, भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास आज T20 क्रिकेट में 2000 क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका था
0: जी,
1: लेकिन वह क्लब की दहलीज से वापस लौट आए। अभिषेक ने अब तक 62 पारियों में 195.28 की स्ट्राइक रेट से 1947 रन बना लिए थे और रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और KL राहुल की कतार में शामिल होने के लिए उन्हें 53 और रन की जरूरत थी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अभिषेक शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ रांची में खेले जा रहे श्रृंखला के दूसरे मैच में 20 रन बनाकर आउट हो गए।
0: जी, दिग्गज खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उनका, 12 गेंद पर आज 20 रन ही बना सके, लेकिन टॉप 5 में, टॉप 2 में हमेशा ही रैंकिंग में अभिषेक शर्मा रहते हैं। हालांकि आज वो रिकॉर्ड को ध्वस्त करने में रह गए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबलों में वही कई कीर्तिमान अपने नाम करेंगे। और अगर श्रृंखला की बात की जाए तो भारत ने पहला मुकाबला डोमिनेट करके जीता था, आगे की क्या तस्वीर है एकता और दोनों टीमों का रिकॉर्ड इस प्रारूप में क्या है?
1: देखिए प्रशांत, भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 श्रृंखला का रांची में खेला जा रहा जो मुकाबला है ना, ये श्रृंखला के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएगा
0: जी।
1: भारत पहले मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले चुका है और अब वेस्टइंडीज के सामने श्रृंखला बचाने की चुनौती है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसके लिए उसे भारत को लगातार 2 मैचों में हराना होगा
0: जी।
1: और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि पिछले 4 वर्ष से ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी टीम ने भारत को भारत में लगातार 2 T20 मैचों में मात दी हो। जून 2022 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब भारत को दक्षिण अफ्रीका ने लगातार 2 मैचों में मात दी थी। उसके बाद के 4 वर्षों में अपनी सरजमीं पर भारत का रिकॉर्ड 42 जीत और 9 हार का है। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि भारत ने 7 साल से भी अधिक समय से कोई घरेलू T20 श्रृंखला नहीं गंवाई है
0: जी।
1: श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत में आपको याद होगा कि भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों T20 श्रृंखलाओं में बुरी तरह हार गया था
0: जी।
1: और मुझे तो लगता है कि देश के क्रिकेट प्रेमी इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे।

0: क्योंकि उसके बाद भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीत चुकी है। दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों की बात करें तो अब तक भारत और वेस्टइंडीज की टीमें 32 बार टकराई हैं। इनमें 21 मैच भारत ने जीते हैं जबकि 10 मैचों में वेस्टइंडीज विजयी रहा है। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ। इस श्रृंखला के अगले मैचों पर नजर डालें तो 11 अक्टूबर को इंदौर में तीसरा मैच होगा, चौथा मैच हैदराबाद में 14 अक्टूबर को खेला जाएगा और आखिरी मैच 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा।
1: जी, ओवरऑल 21 का रिकॉर्ड है भारत का और ऐसा लग रहा है कि आज 22 हो जाएगा क्योंकि श्रेयस अय्यर भी सशक्त तरीके से 12 गेंद पर 30 रन बनाकर खेल रहे हैं और ईशान किशन ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो एशियन गेम्स हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आज अपने घरेलू जगह पर भी उन्होंने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया, ताबड़तोड़ 43 रन की पारी खेली। लोकल बॉय ईशान किशन ने मुकाबले से पहले क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
2: Crowd is there. Crowd is going to be like, you know, when you come here, I've played so much cricket for Jharkhand now. And when you come here, in fact, you get that support or you don't get that support. But you know, there's a lot of members who are going to watch you and who will have expectations just out of love. Not that ki something else will be there, but out of love, they'll just want you to perform. So I know there's a bit of added pressure, but that is the fun part. When you have that pressure, when you know so many family members are sitting there watching your game, you have that pressure. And when you perform there, you get stronger. You get better in life.
1: उधर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच डरबन में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। मैट रेनशॉ 46 और कप्तान पैट कमिंस 33 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन, मुल्डर और नोकिया ने 2-2 विकेट लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 18 अक्टूबर को और तीसरा 27 अक्टूबर को केपटाउन में खेला जाएगा। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज अलग अलग वर्गों के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रेचचेनाक इंतनान से होगा। वहीं पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय का मुकाबला डेनमार्क के क्रिश्चियन फॉस्ट केजियर और रेशमस केजियर से होगा। और श्रोताओं को बता दें कि भारतीय जोड़ी ने पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स को हराया था। एक तक कैसा रहा है अब तक अनुभवी पीवी सिंधु का सफर और क्या कुछ उनसे उम्मीदें होंगी?
0: प्रशांत, आप तो जानते ही हैं कि भारत में पीवी सिंधु को महिला बैडमिंटन का पर्याय माना जाता है।
1: जी,
0: वह लगातार 2 ओलंपिक खेलों में देश के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। वह वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड टूर प्रतियोगिता में भी पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा चुकी हैं। वह देश की पहली और एकमात्र विश्व चैंपियन महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अप्रैल 2017 में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रही थी। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न जैसे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आर्कटिक ओपन सुपर 500 की बात करें तो सिंधु ने जापान की रिको गुंजी को मात्र 49 मिनट में 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।
1: जी, युवा भारतीय जोड़ी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पिछला मुकाबला जीतकर अपनी लय बरकरार रखी है। इस प्रतियोगिता से क्या उम्मीदें होंगी?
0: देखिए प्रशांत, जब भी कोई खिलाड़ी जीतता है तो उनसे और जीत की उम्मीद की जाती है। भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय ने पुरुष डबल्स मुकाबले के पहले दौर में 5वीं वरीयता प्राप्त चीन के जिन तिंग और रेन शियांग यू को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। श्रोताओं को याद दिला दें कि कृष्ण और पृथ्वी की जोड़ी ने मई में एक के बाद एक सेंट डेनिश रीयूनियन और छठी मैक्सिकन अंतर्राष्ट्रीय चैनल प्रतियोगिता जीती थी।
1: बहुत बहुत जानकारी के लिए धन्यवाद एकता। और अब बात निशानेबाजी पर। ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। पदक स्पर्धाएं कल से खेली जाएंगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: निशानेबाजी की दुनिया में एक बार फिर रोमांच और प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार है। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 16 अक्टूबर तक काहिरा में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 51 देशों के लगभग 385 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय टीम में कुल 35 निशानेबाज शामिल हैं। इनमें पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह के साथ एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता

0: अलग गुलिया जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। भारत के युवा निशानेबाज जोनाथन गेविन एंथनी पर भी निगाहें रहेंगी, जो जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रतियोगिता में राइफल और पिस्टल की व्यक्तिगत तथा मिक्स्ड टीम स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता अपनी लय और प्रदर्शन को परखने के साथ साथ साल के अंत में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल के लिए जगह बनाने का भी अहम अवसर है। 10 अक्टूबर को 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल की मिश्रित टीम स्पर्धाओं के साथ पदक मुकाबलों की शुरुआत होगी। मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल में पलक गुलिया, मुस्कान उदयवीर सिद्धू और अजेंद्र सिंह चौहान भारतीय चुनौती पेश करेंगे। वहीं एयर राइफल मिक्स्ड टीम में आर्या बोरसे, ख्याति चौधरी, श्रीकांत धनुष और पार्थ मखीजा हिस्सा लेंगे। काहिरा विश्व कप में भारतीय दल के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने और पदक तालिका में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की चुनौती होगी। अब देखना होगा कि भारतीय निशानेबाज अपने सटीक निशाने और शानदार प्रदर्शन से देश के लिए कितने पदक जीत पाते हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: देश भर की हॉकी टीमों के बीच कल से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। ये चैंपियनशिप देश भर की टीमों को अपना टैलेंट दिखाने और नेशनल लेवल पर सम्मान के लिए मुकाबला करने का एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म देगी। डिवीजन ए में 12 टीमें होंगी, जिन्हें 3-3 टीमों के 4 पूल में बांटा गया है। पूल ए में हॉकी पंजाब, हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु और हॉकी बंगाल शामिल है, जबकि पूल बी में हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी महाराष्ट्र और हॉकी पुदुचेरी शामिल हैं। पूल सी में उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी कर्नाटका और हॉकी चंडीगढ़ शामिल हैं, जबकि पूल डी में मणिपुर हॉकी, हॉकी हरियाणा और दिल्ली हॉकी शामिल है। पूल चरण के बाद 18 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल होंगे, जिसमें हर पूल से टॉप 2 टीमें नॉकआउट स्टेज में जाएंगी। सेमीफाइनल 19 अक्टूबर को होंगे, उसके बाद तीसरे स्थान के लिए मैच और फाइनल 21 अक्टूबर को होगा। 3 डिवीजनों में टीमों के बीच होने के साथ 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप झांसी में घरेलू हॉकी के रोमांचक 2 सप्ताह का वादा करती है, क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाली टीमें अपनी पहचान बनाने और अपने अपने टाइटल के लिए चुनौती पेश करने का लक्ष्य रखेंगी। पिछले संस्करण में हॉकी पंजाब ने डिवीजन ए के फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 4-1 से हरा कर प्रतिष्ठित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था। उत्तर प्रदेश हॉकी ने तीसरे स्थान के मैच में मणिपुर हॉकी को 5-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। शंघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में जर्मनी के स्टार खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आज दूसरे दौर में चीन के स्थानीय खिलाड़ी वो यिविंग को 6-4, 7-6 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं जापानी क्वालिफायर रेस साकामोतो ने दूसरे राउंड में पूर्व फाइनलिस्ट एंड्री रुबलेव को 6-4, 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। और श्रोताओं, आपको एक बार फिर रांची लिए चलते हैं, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला जारी है। भारत ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 224 रन बना लिए हैं। श्रेयस अय्यर कप्तान 16 गेंद पर 38 रन और तिलक वर्मा 14 गेंद पर 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में 1 सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया।

0: सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गईं। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।

0: दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
1: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
0: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
1: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
2: There are three parties that have got licenses.
3: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
4: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
5: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
6: सेमीकंडक्टर जर्नी,
7: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
6: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
4: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
8: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है।

0: आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly constituency in Puducherry. BJP also bags Assam's Nogaon Lok Sabha seat. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed till tomorrow due to security reasons. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stands cancelled at source stations. India stresses the steps announced by US regarding permanent labour certification program do not advance shared ambitions of both countries. South African jurist of Indian origin, Navnetham Navi Pillai, wins Nobel Peace Prize for her contributions to promoting peace and international law. And in cricket, second T20 international between India and West Indies underway in Ranchi. The BJP has registered

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था।

0: पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. In Nandigram, BJP candidate Hasirani Rath defeated Congress candidate Milan Pradhan by over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakha Rao Sarkar defeated Ghulam Nabi Azad of the Aam Janata Unnayan Party, AJUP, by more than 75,000 votes. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand won the Thattanachavadi Assembly by-election by 8,482 votes. In Tamil Nadu, the ruling Tamil Ragavetri Karagam, TVK, won the by-elections in Madurantakam and Tharapuram. K. Margatham Kumaravel won Madurantakam by 73,801 votes, while V. Satyabam won Dharapuram by 9,471 votes, defeating S. Suganya of DMK. In Assam, BJP candidate Devashish Sharma won the Nagaon Lok Sabha by-election, defeating AIUDF chief Badruddin Ajmal by over 1,40,000 votes. Congress candidate finished third. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP-NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC for its victory in Puducherry. Union Home Minister Amit Shah said the NDA's by-election and local body poll victories showed that the people have completely rejected the India alliance. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing media in New Delhi today, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance.
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior the protest, which is